0: Mizoram Rural Bank chuan inchuka hma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account in ei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in ei ber tlola he him the scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina Naktu ko taan chung ko him na.
1: Ifa te bula mei zia li zuk zuan dam doi cha lau om sang tam tak a shing a shan in ei tir ngala ni. Sigret zia zuk hi an tu lo om em em mai bau rok sia cha lau tak tak te tu lo om em em gan tak sata na cha lau tu nan na asma nan na te beng nan na te le thi pui ngay ngay tur chuam nan na a keng tel ni. Sigret zia zuk hi an nau pian cha lau le nau sen thi na ale tin ati tam chin. Sigret zia li zuk hi an nang ma le ifa te nun nanu tak ka e ral me ka ni tu na mei zia zuk ka sim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Mipi Ham Channa Dana Watsai.
3: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वीएलए की तरफ से। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम सौ 100.7। दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी गई होगी, है ना? यस। और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अभी इस वक्त आप खाना खा रहे होंगे, और आप अपने कामों में जाने के लिए तो आप निकल भी चुके होंगे और गाड़ी भी चला रहे होंगे या फिर रास्ते पर जा रहे होंगे। दोस्तों, वैसे भी आज की सुबह बारिश हो रही है दोस्तों, लेकिन ज्यादा तो बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश चल रही है, तो मौसम उतना ठीक नहीं है, रोमांटिक मौसम है। यस, इसलिए हम आज रोमांटिक करने के मूड में है। इसलिए आपके साथ हिंदी के खंड में आपके लिए आरजे वीएलए हंसी मजाक और प्यार भरे बातें करने के लिए मैं हाजिर हूँ दोबारा, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप जो भी करने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सभी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है? यस। तो चलिए, फिलहाल मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत सोनियो। बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो आइए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत ये सोनियो सोनू निगम और श्रेया घोषाल के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत दोस्तों आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। और यस, जैसे कि मैंने कहा था कि आप कल रात की नींद आप सभी की अच्छी गई होगी, आप सभी ने अच्छे अच्छे सपने देखे होंगे और उसी के साथ साथ आज की सुबह भी आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, शुरुआत की होगी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि यस, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे कि आप अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कुरा एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इंसान इतने खुश नसीब होते हैं कि ईश्वर हमें हमेशा एक नई जिंदगी देते हैं, है ना दोस्तों। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का सेहत अच्छा होगा और आप अपने कामों में जाने के लिए जा सकने के लिए भी आप तैयारियां कर रहे होंगे। और तो चलिए, आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमें मत भूलना, FM 100.7 हमेशा आपका साथ देती है दोस्तों। और ये हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी मुसीबत हो, आपके साथ कोई भी मुसीबत आए दोस्तों, ठीक है। आप किसी सफर के लिए भी जा रहे हैं तो आप संभल के जाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा हमेशा, और हमेशा खुश रहिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छा बोलिए, किसी की बुराई मत कीजिए, है ना दोस्तों। यस, हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, किसी की बुराई करने के लिए, किसी के बारे में बुरा भला सोचने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। इसलिए खुद से भी प्यार करो और दूसरों के लिए भी अपना समय अपना प्यार बस बांटते ही जाइए दोस्तों, ठीक है। अगर आप सच्चा इंसान बनेंगे ना तो आपको जिंदगी में बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है। हितेंद्र दास जी ने हमें गुड मॉर्निंग कहकर विश किया है, संदेश भेजा है। और हितेंद्र दास जी, आपको भी आरजे वीली की तरफ से यस ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और इसी तरह आपका दिन अच्छे से बीता रहे। यस, और मेरे बहुत ही खास करीबी दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है। जामहियान, हेलो आरजे वील, नमस्ते, सुप्रभात रोंतिया। यस, जाम नंग पोले ओ चुआन इथो नो आमेम जाम निमिन निजान लमते फुट अंगे वर्ल्ड कप ते ई एन वे एम केसु वर्ल्ड कप ही कंगाई न लो आ कंगाई वेन जो अनि वे लो आ चु वांग इन वर्ल्ड कप चुंग चांग चु से दूर वक कशे के नेशन पा लो ओ चुआन नेक्स्ट सॉन्ग वो इना इड्यूटी पुई ने इन तान ले कंट्रोल रूम आ ड्यूटी तले ड्यूटी ऑफिसर तानले उची पियांगुर द्वाद पा तानले दुर्गेश जी ले हितेंद्र दास असम तानले मिंगच्यांग ते आ पाएंग आ उमा लुआंग मिशन वेंग ले पार पारी पुंग हाक ते पा बिल को थीर मोय मुन पुई गुरी साइलो दे तान पो ओ तीन पुसांग मा मते नु पा मिशन वेंग लांग मी ते मै म्या लविन आरजे वील ड्यूटी नुआम उले रोंतीनी बेल छीने मैं जामे ही कदों गोई गोई छीन मंगाई लो ही आहर छीन बोक्सी आ चुवांग चुवान कन लाफ गोई गोई दिखा लो शिया सिला मिंग मोई ते ह्यान बाला नमस्ते द्यूती नुआम ले अगला गी तितान ले मोया मुन पुई तान लियाव लियाव पुजे पुजे लल जाम सया पुजे लल जाम सया चु इनी ने हुना तेरों दियनी अज्या आरोन टाइप अंग अंगन कचार ने ओम अले बहुत बहुत शुक्रिया मिंग मोइते आपके संदेश के लिए भी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का यस प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिन अच्छे से गुजरे दोबारा। यस जॉन, तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों मुझे सुनने के लिए। जॉन शायद अभी चोई में तो पोकन ओम मई थया
यस, मैंने भी अभी सुबह में कुछ खाया नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा सा भूख लग रही है। और तो इन अच्छे से खाते रहिएगा, ठीक है। एंगे इन में ते पोखा रन सही उला तुई ते उते उते खा इन में चान के चु खाई ते ही कंगाई ना अमो।

बल्दो से उम्मीद है आप सभी को सोनू निगम और अलका याग्निक जी के आवाज में गाया गीत क्या प्यार करोगे मुझसे बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को पसंद आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं कि ये जिंदगी के किस मोड़ पर मिले हो तुम, ना तुम्हें खो सकते हैं ना तुम्हारे हो सकते हैं ये जिंदगी भी क्या चीज है ना दोस्तों। तो चलिए फिलहाल मैं चलना चाहूंगी आप सभी के प्यार भरे भेजे गए संदेश की तरफ और पीसी जेसिका की तरफ से संदेश हमें मिला है और इन्होंने लिखा है कि आरजेवी एलसीबाई निम्न नुआम ओ नेक्स्ट खा नंगले इदिउती पुईते तान ओ अरंती आ ओले कलोम लो तो के पीसी जेसिका आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए और हमें संदेश भेजने के लिए। ओमेगा सांगते अहियान तू ना आरजे दिउती ही आ ओ अमोइन अनु मोई ले मई आ इो हिचु कश तो छीन मासे तुंगे इन इि कश मई थे लौचे लो इन सोते इफेल खा इप्ले तोड़ते इतान लिया लिया ओ रंधे वेल नी चुन जा महियान कसोई दोन बोक लो ओ ओमेगा चुन मेरे दोस्त जा महियान एन चिया ले कचनते पोर्चुगल अन चकलवा इंग्लैंड टीम ते चिया कचनते कचनते अन लदम ओम छोन निता अरोन दी अने ओले ओ चदेव खान लो चनसे लुला नोम दिन लो एन सेल रु ओ वर्ल्ड कप गई नौ जोंग जोंग ले तुई पुई हो जोंग जोंग खा और तो चलिए फिलहाल अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और आप सभी मतलब कुछ कुछ कर रहे होंगे मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन अभी ऑफिस जाने का समय हो चुका है। आप जा रहे होंगे, रास्ते पर होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, पैदल से जा रहे होंगे, छतरी मतलब छाता लेकर यस तो मन मो लु तुक लउला मन मो देव खचवान मो थिल ही अति स्वा रूम रूम थे नीचू थिल तक इन लो थे हिल वे लेंगे ओ तो चलिए फिलहाल आप सभी का समय अच्छे से यूं ही गुजरता रहे दोस्तों। हम गीत की तरफ चलना चाहेंगे तो सुनते हैं ये कुमार सानू नहीं ये गीत है अभिजीत और अलका याग्निक के आवाज में गाया गीत यस हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो। यस एक दूसरे को सताना मतलब कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन हमेशा नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो. यस, एक दूसरे को सताना मतलब होता है ऐसा, लेकिन मतलब बहुत सताना, एक दूसरे को बहुत सताना अच्छी बात नहीं होती है. ठीक है. ये जो सताने वाली चीज़ है ना, मैं दुआ करती हूँ आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हमेशा. यस, चलता रहे. तो चलिए आइए अगले गीत की तरफ चलिए चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ. और मैं सुनाना चाहूँगी, शायद आपको भी पसंद आएगा दोस्तों. साजन, साजन फिल्म मुझे बहुत ही पसंद है. यस, और हम बाद में सुनेंगे. फिलहाल मैं इस अगले गीत में सुनाना चाहूंगी, इस दिल में क्या है धड़कन. और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस दिल में क्या है, मतलब आपके दिल में क्या है, तो मैं तो कहूंगी कि मेरे दिल में जो भी FM ZOY सुनते हैं, हमें संदेश भेजते हैं, FM ZOY के मेरे पूरे दोस्त मेरे मेरे दिल पे हैं. तो चलिए आपके संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी. और वी कुंगते हेना जेमो वेल नि जानि मुतुई एम तो कि नि थौ नवा मोरन तिया ए थौ नवा खोप मै कुंगते एम नंग या ए मुतुई एम इ थौ नवा मेम वर्ल्ड कप एन ना सराउ पुइसिया स्टेटस ते हि एंगे अ मु नम छिन गे ति न्यूज थे बॉक्स सी आ न्यूज थे ngar ngar la chin mo chuan za ma hian kitian pa hian rjvl imo tun lai chu friday hi lo in her chuak thwai thwai se ka ti chin enge chan le wang po ka shilo e ka khong ang che o usoma lo lang usoma hian rjvl good morning arontia e good morning usomi da mem chuan ratika asurna sa si atro film khur deu khan enge na te khai lo thok don nia o chuan motor khalpa in o ka ti kre reng khamo motor khalpa in segment ka lo ngai tha ve reng e o la mo deu deu khai lo play don nia te reng mai chuan fur kho thiang no ya i o le nui rimoi tak mai ngai thak pa a zol ko pui lai twal han lai twal han leo kwal vel tuka man la le nuam hi atambik om lawe atambik om lawe ronte ani anuam chine tak tak mo hi ganti le china bai thak chin mo एक बहुत सुनी से उत्सव बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए और आपके तारीफों के लिए. और मैं भी चाहती हूँ कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीतता रहे, बहुत ही अच्छे से. यस, और तो चलिए फिलहाल मैं गीत की तरफ चलना चाहूंगी. कल बाय बाय दोन रिलो चो ओ. तो चलिए फिलहाल सुनते हैं इस दिल में क्या है मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा आरजे वीएली के साथ हिंदी के गीतों को सुनकर दोस्तों? यस, और अब आरजे वीएली को आप सभी से यस आरजे वीएली को आप सभी से अलविदा कहने का समय आ चुका है। क्या करें दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ ना आपसे बातें करने के लिए, आपको गीत सुनाने के लिए, मेरा मन कभी भी नहीं करता है कि आपको छोड़ के मैं चली जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी दोस्तों, मैं वापस आऊंगी दोबारा आप सभी के लिए 10:40 पर दोस्तों। डार सोमले मित सोमली या करोन लेट ले दोनों ने, ठीक है, ढेर सारे हिंदी के गीतों के साथ और आपसे बातें करने के लिए दोस्तों, ठीक है, मुझे आपकी याद आती है, ठीक है। कंगाई छीन लु तुक चे ओ नंग मानी ब्याकते कोमते नुआम गति थे ए मे मा चुआ नंगली पोइ नुआमिन ती वेंगे कबे से या चुआन सोई तो अंखान ओ आई लतु ते इन लौशे थ्याम लाओ माई थे या वीना ते हुन छतक आ हिमोम तक आ इन लौ मन थे ना दुसक ना कन लान मोल मोल चे नी ती खामिलो श्या सकुलातिन वाते असुरा ओ ख्वाते अनुआम लुटुक लवा चु भांग चुआन इन थो ना कोंगतिन रे आ खान फिल्म खुर तक खान लव थोक उला। और ये मत भूलना कि मतलब मत भूलना कि आरजे वीएली आपके साथ हिंदी के खंड पे है और आपको मिस कर रही है। तो चलिए, मेरा समय खत्म हो गया है और जाम मैसेज और जाम का टाइम आप तो ओ तो चलिए, ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और अगले खंड पे आपकी दोस्त आरजे ऑफेली हाजिर होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए और आप सभी को आरजे वीएली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, फॉर टू ऑल।

नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर एक बार आप सभी प्यारे दोस्तों को, आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। और दोस्तों, आपके साथ फिर एक बार हाजिर है हिंदी के खंड के साथ आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों, आप सभी क्या कर रहे हैं? आप सभी अपने अपने कामों पर पहुंच चुके होंगे और आप सभी ने तो शुरू भी कर लिया होगा अपना काम। तो चलिए, आप भी अपने काम करते रहिए, हम भी अपने इस आज के हिंदी के दूसरे खंड की शुरुआत करते हैं और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, मौसम का सीजन है और बारिश भी हो रही है बाहर शायद, यस। तो चलिए, सावन का महीना है तो सावन के गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। गाया गीत सावन आया है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाया बहुत ही खूबसूरत गीत सावन आया है आप सभी को शायद पसंद आया होगा दोस्तों। और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी प्यारे दोस्तों को, वो है दुर्गेश जी की तरफ से फरमाइश गीत। यस, दिल तो पागल है। जी हाँ दोस्तों, दिल बहुत पागल है, क्या करें हम। और यस, दुर्गेश जी लिखते हैं, यस, गुड मॉर्निंग आरजे, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। यस, आपको भी दुर्गेश जी। और यस, मुझे आपके फरमाइश गीत मिल चुके हैं और हम जरूर सुनेंगे, ठीक है। यस, और जा महिया नार्जेवियल वो इंसू इनाओ के वाला ही अवर रे वे नेक्स्ट सॉन्ग उमिंगा छुआ पुईतान पु सांगमा मते नु परमिशन बेंग खंग मीतान ले ड्यूटी पुइने इनतान पो ओरोंती आ ओले जाम छुआन उंगुरी साइलो हियान आरजेवियल कलो ngai thame che o ka ngai che izai ti le tur kha mei chia in chu du reng mai general zam le bi kung te te tan ni ro se o duty nuam zel o ron tia zam le kung te khan lo sha em o mei che in chu du reng mai a ron ti chhoi mai ya tak tak ni em o zam ole ti chuan ma tuang a fan a hian very very good morning RJ VL Rontia, aapko bhi very very good morning nui le hor hor angu o Rontia ni e kan nui le hor hor ang nui na hor hor tur te kha ron thon bokula mo chutiangin hei kan nui ringot thei chuang lawa ke po in message te thon dana zirte hian kan nui te hi azza thina chuwang chuan हम हमेशा कहते हैं कि आपके बिना ये FM सो ओ 100.7 अधूरा है और आरजे वीएल तो बहुत ही अधूरी है, ठीक है, आपके बिना। तो चलिए फिलहाल चलिए दुर्गेश जी की तरफ से जो फरमाइश गीत आया है दिल तो पागल है सुनते हैं। आप सभी के नाम उदित नारायण और लता मंगेशकर जी के आवाज में गाया गीत दिल तो पागल है आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यस दिल तो पागल है दुर्गेश जी की तरफ से फरमाइश गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दुर्गेश जी ने भी बहुत इस गीत को सुनकर बहुत एंजॉय किए होंगे, उनको पसंद आया होगा, है ना। वैसे भी दुर्गेश जी अपने मतलब मोबाइल से यूट्यूब पर हो या किसी से भी वो सुन सकते हैं, लेकिन एफएम जो 100.7 से अपने रिक्वेस्ट फरमाइश गीत सुनना एक ऐसा सुकून है ना कि क्या बताएं, है ना दोस्तों। ऐसा वाला उन्होंने फील किया होगा दुर्गेश जी ने भी। और चलिए गीत की तरफ चलने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और कुंते हियान कई चुआन कचू शन लाओ अमा कऊ जेल जा मखान मिन मिन लाओ चू पुई जोक अनी अरोंती नी चू चुती चू उंगुरी सोई खा।

ना दोस्तों, नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको अगला गीत सुनाना चाहूंगी। बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, शायद आपको जरूर पसंद आए दोस्तों। और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी, थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप हमें सुन रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप हमें संदेश भी भेज रहे हैं दोस्तों, वो भी अपने कीमती वक्त को निकाल के, है ना दोस्तों। यस, हमें कितना अच्छा लगता है जब आप हमारा साथ इस तरह देते हैं, हमें संदेश भेजते हैं। तो चलिए मैं गीत के सुनाने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ मैं दोबारा चलना चाहूंगी दोस्तों। यस, और संदेश है मेरे लिए हाँकते पाते ओ गुरी साइलौते जामते ओन रन लंगले आ, और दुर्गेश जी की तरफ से भी संदेश आया है और यस। तो यहाँ पर संदेश मात्रा फाद मैसेज खत्सु मोम ध्यान कन सोई ते अंग वेल जामले कुंगते हिचुआन कुंगते हिचुआन dash dash dash dash hi zuka char la wang a mei che om zong zong hi an du huam huam ve ke nu nu ngurin ati ipo mem ka pom ve thau mai mei che om zong zong hi an du ve ati ni chu nu nu ngurin chuan ngak te pa hian a che vi li la play le tur kha vi kung le ra e heo ngakte papon bi kung le rati atita jilal zam le ra o anwan in me dun tak em o arje vieli monan in me atini so kop chuan vi kung le ra jela zam le ra te pani ko plora te tan o ko plora o ko plor lai tak hi poi mo china ni mase a real life a hi chuan ko plor ker hi chu ka ring lo ani an mangai to hi chu an mangai to bur hi ka ring tlatani chuwangin ni e hetia ko plor lo ti a khan yes kan zavain tro kan ko pui telaka enge rin omila midang midang kha ngai twa lau ila mo chuan le itan ka hla ne ron ti a ngak te pa hian ron tho tha le mai chuan nguri sa lo hian a jvl ka peng pong zota meng moi te hi avare ve ka ching mithi meng ve thina ka ching mithi a meng ve thina an in chu thina anu an in chu thina lom mai tlang thave ve anni a anni pani hi chu an in thup mai mai ani kha aban cha em san za ma hian ke rj vl ke ma nen nilavin uchi pian nen alom an in chu buai zok ni anula chu chumo aming bula sailo a oma ishe thei mei em eng chu ti mo sailo fel te mo an lo in chu a e pekin om ro se itchuan omega sang te hian a thai ra po ni garing book lo ya picture on thon zong song hik chuwang chukan khe khariang. तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं इस खंड का अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, सुकून। यस, सुकून। क्या आपको अपने साथियों के साथ या किसी के साथ भी हो, आपको सुकून मिल रहा है या नहीं, खुद सोचिए, ठीक है।

ินไงตัวเชียงเราอู้โม่จวางจวนสุขุนบอดอินพอร์เทนต์จีเซดูสูที่เกี่ยงถ้าคุณสุขุนไม่มีเลยกันนะตัวคุณคุ้มชีบีไม่มีสักทีเหรอที่เกี่ยงอิสลีย์ชีวิตในคิสิกิสัตบีระโฮดอสตีก้าโฮยาหมายถึงรักก้าโฮคิสิเมบีสุขุนบอดอินพอร์เทนต์จีเซดูสูที่เกี่ยง yes or ชั่วเลี้ยฟิลฮาลमैं सुनाना चाहूंगी अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत सुकून मिला आप सभी के नाम और जी हां दोस्तों और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम आपस में बातें करते हैं ना एफएम 100.7 पर जब आप हमें संदेश भेजकर हमसे बातें करते हैं तो वो वाला सुकून यस जिस मतलब जिस सुकून की बातें हम कर रहे हैं ना वो सुकून मुझे मिलता है आप सभी से बातें करते हुए तो उसी तरह मेरी तरह आपको भी जरूर सुकून मिलता होगा है कि नहीं तो चलिए इस तरह हमारा और आपका ये दोस्ती का संबंध प्यार का संबंध एक सुकून का जो फीलिंग्स है ना दोस्तों वो हमेशा बरकरार रहे तो चलिए आइए इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मैं सुनाना चाहूंगी सुकून मिला आप सभी के नाम

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सुकून मिला। गीत अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और सुकून से मुझे एक बात याद आ रही है, मतलब एक शायरी आप सभी के लिए, और वो है, उसे छूना नहीं बस उसे देखना सुकून है। यस, सुकून के बारे में तो बहुत कुछ है कहने के लिए आप सभी से। और दूर है कर भी उसका साथ होना सुकून है। इसी तो मतलब इसी को तो कहते हैं सुकून दोस्तों। लेकिन ना सुकून, अगर अगर आप सुकून को पाना चाहते हैं तो आपका दिल साफ होना जरूरी है, क्योंकि उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। दूसरों की खुशी में अगर आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं तो वो है सुकून। ठीक है। यस। और ओमेगा सांगते हियान कंगाइजुआ छचियांगते लोजिन रो जिन के चाक तो कर कल रोन ट्रो फेक दोन से ओ कर तूना कथिल तीला ही कसो हुन हुना मो कसबमिट फेल जो हुन हुना कलर रोन लो छोक बिग डोन से ओ कन फेंगे यांग ओबेगा जुआन ओ कन चाचुन जोम जेल तयांग इ फेल सी मेल चसी ओ इ प्ले तुरते कन पनी तान लिया लिया रोन ती आ कन वन लोम चीन तक एम खा इथिल रोन थोन ते खा अतुई मेल रो पुई में से खा एंगे खा अंट्रम अंट्रम खा अंग ची तेही अतुई के ती टॉप बुक बोन रो तेही तुई के ती हे मई लिंग अन रो अंग ची ते खा मो हे ता बाय बी ते खा तु ये त्रो जो जो मैं ही चु तुई अनी वे मीम ते पो ही तुई के ती अकंते एंग तीन पोन चुआन छचियांग वी एल ए हे छचियांग वी ए ला तीन पुई इन तुरिन गलो हाक छे अनी ए खाइ मि लो हाक रेंग रो ओ एंगे खा था मा ते खान तुई दोन लु तुक सोन वै मीम कछुम कछुम मिन ता ए पथियान जारा तलाई चु कतले पथियान जारा थाई चु कथर वे नुआल तो इंथर इंथर टेम्फा का ओम लचुआन इदोंग वे नुआल तो आंग ए वन फेल छिन तके खाई थिन लुंग खा अलु कति अमोय कति इन पेथे लौमा इला मो चुआन कन खुआ अमी ते चु कथर टेम फेक तो सिन रोन ती बोका ओमेगा सांगते हियान फेल छिन ले मई नि ए मानी पोइन मंगाई तुरन्या चुत्यांग पोकिन मीते तान पो हियान मंगाई नही ओ कन मंगाई नही कन लुआन छुआ तीर हि कन पी तुरनी ति हि लोशथर ले छविला तिरो मीते ताना मंगाई नते थिल पेक अमो एंग पो खा कन चोंग कम थुम ते पो नि से मो ओ एंगे अनोम एमे मनी तिरो इट्स वन ओमेगा ओ सांगते या बहुत बहुत शुक्रिया। और वी कुंगते या मैसेज रोन थिंग ले आ कंसिया लो लो अंगे साइलो फेल ते चु अफेल ए मसिन अमेल चबोक्सी एंड अप्याना नल बोक्सी जिलल जाम अब्याल नू चुआन अतलुक लो दो अलोम ए अमी जाम लो सोई बेते इब्याल नू खान अतलुक लो दान ओ अतलुक साइलो फेलते न थुक लो दान कारण सोई तेले तो चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को समझावा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को समझावा गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे, है कि नहीं? बहुत ही प्यारा सा गीत है ना समझावा। और तो चलिए हम इस खंड के करीब आ चुके हैं, मतलब करीब मतलब यस, खंड के आखिरी मोड़ के करीब आ चुके हैं दोस्तों। जा महियान अताइप ओ अताइप में का कन्हाक मानेंगे मो जाम कन्हू न तोप ट्रेप तो आ तो ना 11 16 अनि तो आ 17 18 19 20 दैट मीन्स 4 मिनट्स चिया आओम तो आ लो टाइप जेल रो कलो कलो गा कंचे जाम जाम रे रेंग सु ओले और ओमेगा सांगते हियान एंटिंग एरोंती अरोन सोई दिखो माई रिल बॉक्सिया चवान दम छोंग नी ही अरे लो ए मसिन वी एल अरोंती नी नी एत्रो अधिकनी दम छोंग नी ही अरे लो तक सेट अनि केनी पोन हुआन कन नहीं बेसिन ओमेगा ए मसे हेता आइजोला कन नहीं लो मो खोता रिंग दिल लमा कन नहीं दया कु बहुआन कन नहीं अमो चुआन अनु कनु तिखा हे रम कलते फे हुआन तो तिखा नुआमी अति थे तो कनी सुमो रम हुआन तो आ हे था मा चो ऐ ते मो ए रोंग बोलते चो ऐ तिखा तुई ति थे ए मे मनी चु ए तुना चाना ओम तो लौता मिंग कल सन तोता अ वीडियो ते हे अहुआन कल लाई ते थामा आ एंगे न थो खौते ने ना चोन ए लाइव ते कन हन थिर चांग हि चोन नोमति थै जिया खमो अंगै ओम फुंग फुंग छिन हे मै चुवांग चान नि एदम चुंगरे लौते आ हियान नोम दो खान हुन लौ मंग टप मे रउ अमाइ रो चु कन नुंग चंग ही कन्फिम खुर अंगाई कतिया कई चुमो रिल रु छा थिन लुंग थियांग लिम ने ही अपोई मो कति इंति वेम मंगा इन ने चुआन कोपसन लौ तुर कोप ने लौ तुर दिते कोंग तिन रे ओ तमलु तुक एंग पो थोक दो निला खोया पो ओमिला खोई मोना पो कलीला एंग ना पो थोकिला मो एंग ना पो तोकिला नलियाना मो नते एमो मो खतियांग एंग पो खा आ लौ थोक पो नि इला कन मिश्रिंग मी जिया ही एंगे अधिक तुरनी कतिवेतला रिल रुथियांग ह्लिम थिनलुंग थियांग ह्लिम अपोई मो लुतुक अछनचू पथियान हियान मो कन रिल रु ही आ एन अनि तेरो चुवांग चुआन मिश्रिंग चु कन बुम थे कन दे कन बुम थे नि मासे मिन स्याम तो पथियान का गन बुम थे दोन लाओ तिया यान इचियांग थर ले जुआली ला तेरो कनहु न तोम दोन चान कुंग अजा महियान आरजेवीएलवी कुंग कोप्लोर थिया मचू अवति मा मावे अजाम लाउते ए असोई साई लाउ फेल ते मो कबियानु लगा चुआन कबियानु लगा चुआन अंगे पो अटलुक लाउ ए कैसे में शेयर में कि अन्या को बिया नूचू ओले चान मोरी से लो लंगा मोरी से हियान मिस आरजे वो इंदी लेन नुआम ले अब तोई वे ओ मेसेज टू ओ कत गांग तोई फेल देव देव खा लोम नुआम और दुर्गेश जी ने आपका बेस्ट प्रोग्राम के लिए शुक्रिया दिल से कहकर दुर्गेश जी ने संदेश भेजा है और बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका एक संदेश मैं बाद में पढ़ूंगी ठीक है मेरे दोबारा आने के बाद। और इस तरह दोस्तों आप सभी लवली लवली दोस्तों को मेरी तरफ से आरजे वील की तरफ से ढेर सारा प्यार दोस्तों ठीक है मंगाई ना करोन थोन एंगे करोन थोन वोंग वोंग चेउ नी मो मंगाई ना थियांग लिम तो चलिए मेरी तरह आप सभी भी ओमेगा मैसेज रोन थे निलवे कन खुआ छू निलाओ तो चलिए फिलहाल मेरे जाने का समय आ चुका है। दोबारा मिलते हैं 12:40 पर यानी 12:40 मो दार सो पनी ले मित सोम लिया करोन किर ले अंग ओ तो चलिए तब तक के लिए आरजे वीले की तरफ से बाय बाय टेक केयर ले वे कु ओ और ये
आखिरी गीत तो जो मिला मेरे मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों को सामते कुंगते ते ओमेगा सांगते ते दुर्गे जी ते मोरिस ते उंगोरी ते खांगते पाते मातुआंग ते लदिन पुय ते ओ आप सभी को और स्पेशली ये गीत इस गीत को पसंद करने वाले मेरे उठी पिया ओ तो ना उठी पिया ही अन बुआई लुत्तु का मीटिंग ते पो अन नहीं कशिया अब बुआई लुत्तु का अमातान लिया लिया पोनी से यस और तो चलिए सुनते हैं तू जो मिला इस खंड का आखिरी गीत। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए इस केवल इस खंड के लिए। फिर एक बार आरजे बीरी की तरफ से बाय बाय टेक केयर ऑफ यू ऑल।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से। और दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीत रहा होगा, है कि नहीं? यस। और आइए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा हिंदी के खंड पे। और आप सभी ने आरजे लोमते के साथ, यस, भरपूर एंजॉय किया होगा उनके साथ, उनसे बातें करते हुए दोस्तों। और आपको दोबारा हमारे साथ हंसी मजाक और प्यार भरे बातें करने के लिए दोस्तों, हम आपका इंतजार करेंगे। आप सभी के प्यार भरे संदेशों का दोस्तों, यस, और हम आपके बिना अधूरे हैं, कभी मत भूलना, ठीक है? ये FM 100.7 आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के संदेश के बिना अधूरा है, इसलिए दोस्तों आपका इंतजार हमें रहता है। तो आइए, आपके इंतजार के लिए इस खंड का सबसे पहला गीत सुनाना चाहूंगी मैं आप सभी को। अरिजीत सिंह के आवाज में गाया गीत केसरिया, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यार भरा गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को केसरिया गीत अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, और हम चाहते हैं इस तरह आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ गुजरता रहे दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ दोबारा। और गीत की तरफ चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पर गौरी सैलव की तरफ से संदेश आया है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। और गौरी सैलव या नार्जेवियल इतान कलोम रेंगे ओ रोनती या कलोम ले मैं उंगोर लो ओम रेंग रो लाइदार थुम थिंग ओ। और दुर्गेश जी की तरफ से संदेश आया है। दुर्गेश जी लिखते हैं, आरजेवीएल जी आप हमारे यहाँ बार आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो अच्छी बात है ना। आपके वहां तो मतलब मौसम शायद बहुत गर्म है ना। तो मैं यस, मैं उम्मीद करूंगी कि आपका दिन समय बारिश के साथ अच्छे से बीते। तो आइए चलिए दोस्तों, हम अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके यस, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत। इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के खंड में हिंदी के गीत सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आप सभी को हिंदी के गीत पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, और हम दिन के एक मतलब आज के दोपहर समय में पहुंच चुके हैं दोस्तों। यस, एक बजने वाला है, और आप भी मतलब दिन दिन के लिए मतलब चाय वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा पीने के लिए आप थोड़े से समय निकालने वाले होंगे, है कि नहीं? यस, आप चाय पीजिए, चाय के साथ कुछ कुछ खाइए, अपने दोस्तों के साथ आप वक्त बिताइएगा। वैसे भी दोस्तों, आज का ये जो मौसम है उतना ठीक नहीं है, मतलब बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश चल रही है दोस्तों। और इस बारिश के मौसम में ना दोस्तों, मुझे चाय के साथ ना मतलब पकोड़ा मो पकोड़ा रामदेव देव अंग सीखा। मुझे खाना बहुत पसंद है, ठीक है, सॉस ने मो हे रुआ सुर ही चुआन पकोड़ा ले थिंग पुई तु तो ही अतुई कति छुई ने मो चुआन अतुई इन लो तिबे गे मो लो ऐ बे छिन रो मासे रुआ असुर चौ इन ओ रुआ सुर लवा चुआन थिंग पुई ले पकोड़ा ही चु तुई कति चुआंग लवा रुआ खा असुर खे रंगाई। सवांगिन रासुर का रा पकोरा दिखा अलो आइन में बी की कतिया चुआन अतुई ए में बी कनी चुमो। यस, और यस, अब हम अगले गीत की तरफ चलने से पहले हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ। यहाँ पर हमने नंबर सेव नहीं किया है ही अब वही खत अनि ही वाला वाला साइल आउट इन ओमा अ नंबर ही कनला सेव लवा वो एक हट मैसेज रन थोन नंगे अनि यंग ओ ओ रन थोन चीन चु नी से जान सेव गे तुरा कंगा या अलो मम ले मई। हाँ, तो इन्होंने लिखा है ना नल देव देव रन टिजेल रोन दिजेल लो रोन ती इन रोन थोना ओ ले कन लो दिजेल अंग ओ, लेकिन उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ बने रहना है, ठीक है, पूरे शाम के 3 बजे तक। और पीसी जेसिका ही या ना जेवी ले लो लेट ले तामो कन कन लो कन लंगाई था रेंग से ऊ अनिया ओ नेक्स्ट का इन पथुम तानो रोन दी बोकनी ओ ले इवन फेल छिन तकेम चुआन kachan pa zamahian RJBL good afternoon ronti ya chunu hun man nuam o ronti a o kalom lu tuk o zam chuan hei hei kana hostel kachiat hei kana hostel atang a chua ka kan kan boy pui le photang he o ka man ve le ka lo in report le ang a ron ti ni fel chi ne dam ole ole lo boy pui la ai chak zong zong te kha lo pe la lo duat la o RJBL in le kha chada mi lo zero ati te poi lo ti don nia o chal mi lo biak bok don nia thik e और दुर्गेश जी ने बहुत ही ज्यादा बाप रे गीत फरमाइश की है, कहो ना प्यार है, छम छम छम और एक गरम चाय की प्याली हो। ओ, तीन गीत रिक्वेस्ट किया है दुर्गेश जी ने, फरमाइश किया है, लेकिन दुर्गेश जी को थोड़ा सा इंतजार करना है उनके फरमाइश गीतों को सुनने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा संदेश आया है, ओ, मैं बाद में पढ़ना चाहूंगी, BL चोंगथू की तरफ से संदेश आया है, लेकिन दोस्तों मैं यस, आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप हमें छोड़ के कहीं जाए। और चलिए, हम सभी का समय यूं ही अच्छे से बिताने के लिए, समय गुजरने के लिए आइए गीत की तरफ चलते हैं। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को, बहारा, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत बहारा बहारा। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, मुझे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये गीत, आपको भी जरूर पसंद आए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी के लिए। यस, हमारे दोस्त दुर्गेश जी की तरफ से जो फरमाइश गीत थे, उन्होंने तीन फरमाइश गीत भेजे हैं। उन तीनों में से मैं एक गीत जो मुझे पसंद है वो गीत कहो ना प्यार है मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो आइए, और भी चोंग थू ह्यान ध्यान रोन थोना कन्नी छलाउते मिन तिछतु ले कन्नी छलाउते मिन ति छत तू ले कनी छाते मिंती छले जुआल तू छियान इनी आ कलो में अरोंतियानी ए खाय अपन रो पुई एम वे ओ चुती मो तक तक मो अपन नाम एम चुती चू कहो ना प्यार है तियांगो। यस, तो चलिए सुनते हैं कहो ना प्यार है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों के लिए, और स्पेशली बीएल चोंगथू के लिए मेरी तरफ से, और दुर्गेश जी को भी। यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको ये गीत जरूर पसंद आए। तो चलिए चलते हैं गीत की तरफ, और ये गीत आप सभी के नाम।

यस जी हाँ दोस्तों, हमने कहा ना हमें भी प्यार है आपसे, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह हम सभी का ये जो प्यार का संबंध है ना दोस्तों, दोस्ती का जो संबंध है, इस तरह हम एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वो हमेशा यूं ही जिंदगी भर बरकरार रहे। आप क्या ये ऐसा सोचते हैं? मैं तो हमेशा सोचती हूँ, जब भी मैं इस FM 100.7 आती हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा निकलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बातें करना, आप सभी को गीत सुनाना, आप सभी से अच्छे अच्छे बातें करना। और मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप भी ना जिंदगी में एक अच्छा इंसान बने, आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिले आपके जिंदगी के हर मोड़ पर दोस्तों। तो चलिए मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी और संदेश आया है यहाँ पर। ओ मैं वाला गुड आफ्टरनून, अगला गीत कबूला पे कतान रोंतिया ओले कन्वन लो मिलोंगाई था। मैं मोहिते बहुत बहुत शुक्रिया। और बी एल सोंग थू हियान, बी एल सॉन्ग टू हियन, तुम्हें देख के लगता है वाईफाई का सिग्नल फुल हो गया। ऐसी बात है। चौहान के गई थे हियान खुद से हाथ लाई लाई प्यारी प्यारी कहा नहीं रोंती वेले तो मैं ही चो। अले चुआन खोचिया ही चु अशोम निते रो मासे रुआ असुर सिंह सिंह ही चुआन नुआम वे अनुआम वे थाउ छी ने निमो। अले तो चलिए फिलहाल तो होना प्यार है तो हो गया और आपको भी पता चल गया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आप भी हमें कितना प्यार करते हैं, ये सब तो हमें पता चल गया। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ जो है देखिए अजी जाने मन। यस देखिए अजी जाने मन मेरी तरफ से इस खंड का दूसरा गीत आप सभी के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को देखिए अजी जाने मन। यस, आप सभी को उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में गाया गीत आप सभी को बेहद पसंद आया होगा दोस्तों। और हमारा समय भी चला जा रहा है। समय इतनी जल्दी चली जाती है, क्या करें दोस्तों है कि नहीं उन्हीं अलियम जुंग सुंग जेला बॉय था कनी ही तेरा ओ बॉय था को दुगमाई कनिंग इनिंग बेची ने हम ओले सुवार। अब हम चलेंगे आप सभी के भेजे गए संदेश की तरफ। एल बी रेंटल हियन आर जे वेल लौ लंगवे मनचा ए मासे नथो पा इन लौंगाइ थरेंग चे ओनिया इपेले तुरखा इटालिया लिया ओरोंदिया ओले एंगागे थोआ एल बी राते असुर सेंग सेंग रिंग बॉक्स सी आ रासुर काराते खान नाते खलो थोकांगे ओ इन इन लो इन एन कॉल छाला इलो दम लो पलंगे ओ राते खाइ लो दो पलंगे। सान मोया मुन पुइहान आचेविल जेनल जा मंगुरी सालोंग हाकते पावी कुंगते आ पीसी जेसिका ते तान ले नंग माता नरोंती बोका ओले कन लोम लु तुके ओ चवान मॉरिस अहियान मिस आरजेविल गुड आफ्टरनून रोंतिया। यस, आपको भी मॉरिस और प्ले लिस्ट अमोये ओले कलो में कथा दू दे खा रोन प्ले ला करोन सन फौ खा ओ इन ये खा कैसे तो लो एक पो जुनी से हुन तो ब्लमते अनी मेल तो सी आ ट्वांग तका हो तुरिन दु सगना सांग ब्रेंग कलान छे नेक्स्ट जो ओ एफ एम गाइ तु ते तान कलान वेक बोके अरोन तिया निलाउ दे उदार नीले मित ना करोन लेट ले दोन ओ ठीक है। ये मेरा आखिरी खंड नहीं है, हमारे पास और एक खंड है आज के लिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी दोबारा 2:05 पर। ओ मॉरिस और एल बी चोंग थुयान अगदी बी एल चोंग थुयान तुम्हारी एक स्माइल के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा एं चुतीमो कवन ओइलो तुम चांद हो और मैं तुम्हारा चांदनी ई अगर मेरी एक स्माइल के लिए अगर आप दुनिया से लड़ जाना चाहते हैं तो ऐसा संदेश भेजिए कि हमें खुश कर दिए। सुन है ये मैसेज रंथन तो ते पोकन हन एन लेट वेला दिंगे ए ती ही अजे वी ली ते खा अनहिम होर होर बोक सिया ते ये रंती वेला निमो अनहिम होर होर कनहिम होर होर बोक लाओ। तो इसलिए दोस्तों मेरी तरह आप भी हंसिए मुस्कुराइए दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। ठीक है, उदास मत होइएगा, उदास मत होना, हमेशा खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए क्योंकि दोस्तों जिंदगी छोटी है। अपने इस कीमती वक्त को ना दोस्तों अपने अपने लिए ना सही दूसरों के लिए समय बिताइए। ठीक है, तो चलिए इस खंड का दूसरा गीत सुनते हैं। हे या हो आप सभी अपने अपने जगह पर नाचिए, यस मुस्कुराइए। आइए सुनते हैं उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

बिल्कुल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को ये जो गीत मैं सुना रही हूँ आप सभी के लिए, आप सभी को पसंद आया होगा। यस, और अब हम चलेंगे यस अगले गीत की तरफ। और दोस्तों, उस गीत के तरफ चलने से पहले वाला साइलो हियान अरिजीत सिंह ला नल दे उदे तिखा हन वोर ला ला तिखा करोन थंग वे जो जो छीना ला थिखा करोन थंग वे जो जो छीना इन लो सेफ लो बी करोन तिया ए हे कन लो सेफ का लो सेफ गा लंगे ओ का लो सेफ गा ला ति छुआन। आपका ये जो मतलब ये जो फरमाइश गीत है अरिजीत सिंह के गाए हुए गीत, मैं आपके लिए जरूर पेश करना चाहूंगी, ठीक है? और

zama hian a reveal ko chia le inuiri hi chu avan in ko prem tak em oh ani mo zam ke ban lom vel moya mun puita ni ple le tur kha kan thlan sak ve ange chul ang ang boy pui zo nu in kan in shwai chuak thei to e avan lom om ve oh zam chuan min lo bia kem chuan pa ku nga hian a je ro sur noya mau tuai khor anuam kan me du lo ame kha ruwa in anan fai nga zela mautuai korin nu hau chu kan chuak nu hau chu an chuak no no mai mole ruwa ban po nei ve le lo te chuan nu hau te chu an dang zo ve te lo mai hei aron ti ani e khai e tuang dewin in na tho tur ho kha o in na tho lai mek te pokha lo thok zel ula o chat dewin tuang dewin lo in lo mang zel donia o to aap kam bahut bahut shukriya aap se pyare dosto to aaye aur yes Hitender Das ji ki taraf se bhi good afternoon kehkar hame wish kiya gaya hai bahut bahut shukriya Hitender Das ji to aaye wala silo ki taraf se jo Arijit Singh ke आवास में गाया गीत उन्होंने गीत तो फरमाइश नहीं किया है लेकिन अरिजीत सिंह के गाए गीत फरमाइश की है तो इसलिए मैं उनके लिए और आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए ये जो अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत है तुझको मैं गीत सुनाना चाहूंगी तो आइए सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के लिए और स्पेशली वाला साइलो के लिए

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को गीत मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा मुझसे बातें करते हुए और हिंदी के गीतों को सुनकर। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है आप सभी से बातें करते हुए और आप सभी से हंसी मजाक करते हुए, प्यार भरे बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन दोस्तों, मेरे जाने का समय आ चुका है, क्या करूँ मैं। समय की पाबंदी के कारण आपसे अलविदा कहने का समय आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये खंड मेरा आज के लिए आखिरी खंड नहीं है, मेरे पास और एक खंड है जो है 2:05 पर। मैं वापस आऊंगी दोबारा पूरे 2:30 तक आपका साथ देने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको गीत सुनाने के लिए दोस्तों। और वाला साहिल खान तो ना कहा प्ले मेक अरिजीत सिंह अल्ला सकमो तुझको दिखा अमोई अतिंगे कभी सया तिचुआन लादे लौथांग जेल से मैसेज का लौथांग जेल से चुआन कमिंग खा अशिया एमो अशिया लौचा लौथिन सिया सिला। ठीक है, मैं हिंदी के खंड पे आपके साथ जुड़ी हूँ, आप सभी की दोस्त आज वियली और माई डियर सुठी पिया दपो खोया मनी अंकल मेकंगे अंकल दोन गे कैसे लवा कारा चंगिन कारा चुआंग पाइन कन लौंगाई थमे चे नीति अरोन अरोन थोना। और यस, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। अब बुआ एम एम ओ बुआ एम एम से मिन लौ मिन थे हिलगाई लौती ही कशिया आम। यस, इसलिए मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और यस, वो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। तो चलिए, इस तरह आप सभी से फिर मुलाकात होगी और यस, हम ढेर सारी बातें करेंगे। और दोस्तों, में जाते जाते एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी जो है कि आज बुरा है कल अच्छा आएगा। ठीक है, आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है बदल जाएगा। ठीक है, जो आज मुश्किल लगता है कल कहानी बन जाएगा, ये आज का बोझ कल हल्का हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रख, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रख, ये दौर भी गुजर जाएगा, वक्त ही तो है बदल जाएगा। ये जो वक्त है ना दोस्तों, जरूर बदलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आज अभी का जो समय है वो बुरा है, तो भी फ्यूचर में ना आपको बहुत ही ज्यादा खुशियां मिलेगी। ठीक है, तो आइए आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। और मैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर, तो ये आखिरी गीत तू जो मिला से मैं अलविदा कहना चाहूंगी। मेरे उठी पिया का बहुत ही मनपसंद गीत है, तो आइए सुनते हैं इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से और मिलते हैं 2:05 पर। तब तक के लिए दोस्तों, आरजे वीले को इजाजत दीजिए और केवल इस खंड के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।

हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वियली की तरफ से और आप सभी मेरे साथ हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम से 100.7 दोस्तों और आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार हाजिर है आप सभी के लिए, आप सभी से प्यार भरे बातें करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए दोस्तों। यस हाजिर है आप सभी के दोस्त आरजे वियली एंड आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस आज के हमारे हिंदी के आखिरी खंड पे दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन, समय, काम आप जहाँ पर भी हो दोस्तों, आप जहाँ में भी जा रहे हैं, आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा। आप अच्छे से अपने अपने काम कर रहे होंगे। तो आइए हम इस खंड की शुरुआत करते हैं। और यस कंदी यो नुनपुई ओ नुनिन लारोन थंगा, उन्होंने एक गीत फरमाइश की है, लेकिन उनका जो फरमाइश गीत है मैं पहले हमारे प्लेलिस्ट में ढूंढूंगी, अगर मुझे मिला तो हम जरूर सुनेंगे। यस रिक्वेस्ट ना आ रही तो बोका तो इसलिए चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी इस खंड का सबसे पहला गीत। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, हंसाते हो रुलाते हो, मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत, यस, ये गीत नाम सठमान पोन मोय अति आ चुवांगिन जिंकार आत पोखान, यस, अपने काम पर जाते समय हमें वो सुन रहे थे। चांद कलो सोई मैं सकपला, लेकिन अभी शायद वो हमें सुन रहे हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिल से उनको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी कि वो हमेशा यस एफएम जो 100.7 को सुनते हैं, और यस उन्हें अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें सुनते हैं, हमें संदेश भेजते हैं दोस्तों। और यस अगले संदेश की मतलब अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ। और यहाँ पर संदेश आया है मेरे दोस्त ओमेगा सांगते अले जामते हितेंद्र दास जी की तरफ से, यह संदेश आया है। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को, यस ले नुनी, ओ नुनी का फरमाइश गीत जिया धड़क धड़क जाए, शायद आपको ये गीत पसंद आएगा जरूर। आप सभी के लिए राहत फतेह अली खान की आवाज में गाया गीत है दोस्तों। और जामहियान आरजेवीएल तुआंग तकिन होंग से ओ चुआन रे रिया लविन लौकी ले थोड़ा थोड़ा यंग से ओ तीन के चू फ्राइडे मोल खा कंग खेल दो। नेक्स्ट इतान सा विकुंग विकुंग लेर थक तान चुआन नहीं विकुंग लेर थक थक तीलाई तका नंग मापो का इतक जोग नहीं लाऊं मो इतक जोग नहीं के शिया ओ जाम खा इन्हें खा पिक्चर ते ने ठंगी लाऊं तो ना इतने गए थे वेल ही चार तो लाऊं मैं यंग और ओमेगा सांग दे हियान का गाइस जो आ चुकी हैं ते ओय ओम लो ए इलावला हो एम लो मो शिशेल ना चा चुआन ज्ञान सन मो से सुसे दूसर ना इतान हुन मन नुआमले अरोंटिया नंग पोले ओ ओमेगा फिर ची ने मैं मिन दूसर ना ते ओ का गाइस लो का एप्रिशिएट गोई गोई दिखा मिला उसे सकला ते चुआन। और हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है और उन्होंने लिखा है कि वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स, शो आई लव आकाशवाणी, जान है आकाशवाणी। सो स्वीट हितेंद्र दास जी, प्यार है आकाशवाणी, लव है आकाशवाणी, वाओ। यस तो चलिए फिलहाल मैं आऊंगी दोबारा हितेंद्र दास जी आपके संदेश की तरफ। फिलहाल मैं ये गीत सुनाना चाहूंगी जिया धड़क धड़क राहत फतेह अली खान की आवाज में गाए गीत आप सभी के लिए हमारी दी ओ नुनी लनुनी की तरफ से ये फरमाइश की थे दोस्तों। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिया धड़क धड़क मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को, आप सभी के लिए जो गीत पेश किया गया था हमारी दोस्त दिया उन्होंने की फरमाइश की, दोस्तों जी आ धड़क धड़क जाए आप सभी को सुर पसंद आए होंगे, है कि नहीं? यस। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ, हम आज ये गीत पता नहीं क्यों पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी दोस्तों। और मेरी दोस्त आरजे ओफिली को भी ये गीत पूरा सुनने का मन है। आरजे ओफिली पोन हे लाही अंगाई था कुई दुआ निमो, अंगाई था फूल दुआ, अंगाई था फूल है थे लवा, इसलिए मैं आप सभी के लिए पेश करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ओमेगा सांगतेया की तरफ से संदेश आया है, लेकिन मैं इनका संदेश नहीं पढ़ना चाहूंगी। ओ स्वान, स्वान तुए मनी, तुए मनी तिलविन आज ओफिली सोई ही अधिकी कती आ मो कोवेल ही मो अदोंग सोंग थियाम थियाम अथिर थियाम थियाम तान हे कोवेल हे शिंग नुन हि चू अनुआमा निमई मो चवांग स्वान अपोई मो नी तिरो। तो आप कहीं पर भी हो दोस्तों, आप जहां पर भी रहते हैं, बस बस आप अच्छे से वक्त बिताइए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए दोस्तों, ठीक है? किसी की बुराई मत कीजिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अच्छा इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है दोस्तों इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है दोस्तों, ठीक है? जब तक आपके पास अच्छे वक्त है, अच्छे समय है, अच्छा समय है दोस्तों, उसमें भरपूर आप इंजॉय कीजिए अच्छे से, लेकिन ठीक है? तो आइए सुनते हैं तू जो मिला मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अभी जो हमने गीत सुना था, बहुत ही खूबसूरत गीत, तू जो मिला के आवाज में गाया गीत, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, ये गीत इतना गहरा है कि आप अंदर जाके, मतलब इस गीत को आप जब बहुत ही डीपली सुनेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तो आप इस गीत को ना महसूस कर सकोगे कि जो इंसान आपके इतने करीब है ना दोस्तों, जो आपके नजदीक है, करीब है आपके दिलों में, वो दूर रहकर भी आपका साथ देते हैं। ठीक है, यस। तो चलिए, फिलहाल हमारा समय खत्म खत्म होने वाला है, इसलिए आखिरी गीत के साथ मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगी। और दोस्तों, आज जिन्होंने भी मुझे संदेश भेजे, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश भेजे, मेरा साथ दिया, अपने कीमती वक्त निकाल के दोस्तों हमारा साथ दिया, हमें सुने, उन सभी दोस्तों को, उन सभी प्यारे दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और मैं हमेशा कहती हूं कि आप सभी से कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, FM सोय 100.7, यस, इस मेगाहर्ट्ज़ को जो सुन रहे हैं, FM और 100.7 को, दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूंगी जाते जाते कि इस दुनिया में अगर आप एक अच्छा इंसान बनेंगे ना, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यस। अगर आपके जिंदगी में कोई भी मुसीबतें, मतलब कोई भी धोखा देने वाला होगा भी, तो दोस्तों आप मतलब बुरा मत मानिए, बस आप आगे चलते रहिए, पीछे मत मुड़ना दोस्तों, पीछे की तरफ मत जाना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसलिए हमें बस आगे चलना है। ठीक है, और अपने इस कीमती वक्त और मतलब ईश्वर के दिए गए जिंदगी को ना दोस्तों, एक अच्छे से, अच्छे तरीके से जीने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, गलत काम तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, यस। तो इसी प्यार के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी की दोस्त आज रियली आप सभी से अलविदा कहना चाहेगी दोस्तों, और मैं वापस आऊंगी जल्दी दोबारा इस FM 100.7 पर, और मुझे आप सभी के संदेशों का इंतजार रहेगा दोबारा। ठीक है, यस। जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, हमेशा खुश रहना और मुझे ज्यादा मिस मत करना। ठीक है, यस। मैं भी आपको, मतलब मैं तो हमेशा आपको मिस करूंगी ही, लेकिन यस। तो चलिए, फिलहाल मैं तो मिस करूंगी, लेकिन आप मुझे ज्यादा मिस मत करना। ठीक है, तो आइए मेरी तरह भी आप हमेशा मुस्कुराइए, हंसिए। ठीक है, इसी तरह आप सभी का आने वाला समय, दिन, रात हमेशा अच्छे से बीता रहे दोस्तों, खुशियां और आनंद के साथ। तो ये आखिरी गीत इस खंड के लिए मेरी तरफ से, अजय बिली की तरफ से, और अजय बिली की तरफ से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, बेक वो।

आपकी आरजी मोहन पी 100.7 FM जोई में आप सबके साथ आया हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों, संगीत के बिना जीवन जो है अधूरा है ना? इसीलिए हम संगीतों के साथ आप सबसे भी बातचीत कर संगीतों का आनंद लेकर के, गीतों का आनंद लेकर के, क्या है, हम आपके साथ बातचीत भी करते रहेंगे। इसी तरह से हम और आप मिलकर के चलिए इस आलम को बहुत ही सुंदर और मज़ेदार बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव जीवन में संगीत का महत्व तो हम सब जानते ही हैं, और संगीत ही ने तो हमें यहाँ पे खींच लाया है ना? एक तो ये क्या है, मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन संगीत बहुत कुछ हमें बतला भी देते हैं, यानी कि जो हम मुंह से

नहीं बोल सकते, शब्दों से नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी संगीत काम कर देते हैं। चलना चाहूंगी गीत की ओर। सबसे पहला गीत आप सबके लिए ये रहा दोस्तों, मन फिल्म का, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में हम सुनेंगे मेरा मन। आप सबके लिए तहे दिल से मेरी ओर से।

दोस्तों, मैं आपके SMS की ओर जाना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर गीत था, वाकई में मन फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत था। दोस्तों, यहाँ SMS आया है वी कुंतिया की ओर से। इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। इन्होंने कहा है आर जो मोन पुई इतलाई लम चिबई ओ इन लमते बॉय एम रंतिया बॉय वे नोक नोक छेना लिम ओम बोका चुआन वो इन लमते और ना ते कन थोक लोंग थे या चौन है ना जन लम ना तिहान कन हन थोक लंग ले आ दमा है त्यांग अंग थोक थे या कन ओम ही पथियान मल सोम न ले आ ले आ वनी दिखा ए कन सोई दो आ चौन कुंग तिया नंग एंगे ती सोक ले वो इन लमते इहुन मन दान ते लिम तकी निलो मंगेम इदम था एम ती ते मिन लो शिल दोन न्या आ चौन तुई तकई ngai thlak tan kan ngai thlak le tor te tan ka tia chuanin ka se lo imu ta chuak le ngem ti chu mo ma se eng po ni se i thei chin chin min lo men pui le don ne a aur yahan pe ma mun ni ram lo Chelsea han ti deu nge ta mo World Cup la hianin itui om hi ka ti amo ma mun ni idam tha mo ma mun ni ingai om thei nom nom khop mai u man pui hlanal tok tok lo player o hlanal tok tok ngai thla khian om te hi ti nom ve a ang kalaw ha dam veng veng chin mira man anal ngal amir khan le manisha te mitla a alang ngal ron ti ni ma muni hian ni la tu do kan ron play fu a ma muni lom om le mai tro chuan kan ngai thak le tur teng te po hi i la sha cha ve kan ni kring a tu i tak ni lawai thla le don nya a yahan durgesh ki or se SMS aaya hai inhone kaha hai good evening rj namaste bol namaskar bola hai aapko bhi bahut bahut namaste theek hai na aur durgesh yahan श्रोता के रूप में इन्होंने कहा है लिसनर जो है दुर्गेश नगनपुर इस तरह से मेंशन किया है अपना नाम और आरजे जी थैंक यू फॉर प्लेइंग सॉन्ग मेरा मन कह करके इन्होंने हमें SMS दिया है। दुर्गेश जी आपको दुर्गेश आपको गीत पसंद आए हैं इसीलिए मुझे भी बहुत खुशी हुई है और आपने यहाँ पे जानवर फिल्म का तुझको ना देखूं तो इस गीत के लिए फरमाइश दिए हैं। इस गीत को हम प्ले कर पाएंगे इस सेगमेंट में तो हम प्ले करेंगे, नहीं तो बाद में देखते हैं। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है अपने निकाल चुकी हूँ, फिर भी मैं देखती हूँ, ठीक है। हितेंद्र दास की ओर से यहाँ पे SMS आया है, इन्होंने कहा है गुड इवनिंग आरजे जी फ्रॉम असम। ओके हितेंद्र दास, ओ थैंक यू हितेंद्र दास सुनने के लिए, और आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक जाता है, ठीक है, फॉर यू। और यहाँ सीजित की ओर से SMS आया है, इन्होंने कहा ए खाई रंती आ चिबाई हुन मन नामले फोत मई आ हरंती ने सीजित हियारिन सीजित थैंक यू कलोम एम एम ओ चौनिन तुई तक नहीं लौंगाई थदोनिया। पीसी जेसिका की ओर से यहाँ पे SMS इन्होंने कहा उमान पुई इतलाई लम चिबाई हुन मन नाम ओ नेक्स्ट खा नंग ले ड्यूटी पुईते ने निन तान ओ रंती ने ओले हे के ड्यूटी पुईते पन पने ने अन ओमा स्टूडियो आ का नोम वे का चान अन ने पो पन तुई तक इन लो ngai थंगे तोरा ngai यांग ओ पीसी जेसिका हे अथवाल मोया मो इन इन अथवाल मो वाल मोया एम एम अन tenen kan han duty ho le a nom le ni heta po nom kan tile ni itan karon tile ta tui takin longai thadon ne o chon kung te hian nim ron chan nei kan chhar le nga lo long ki po kadam cha e tile ngin rasura borok po nom khop mai ron ti ni ni e borok lum lut tuk te an ron ti da ya nom khop mai vo in ni borok chutro rasur po in nge kan tan mal som na alu tukhi chu engma po hi nom em em chuang lo ma se vo in ni borok ka chu nom to khop mai lum lu tuk te kharon te diving venga te ro chuan lo dam thaje i lo dam thaje don nya o ga dam tha e tia lom um lu tuk chala ja hongi agle git ki aur agla git ye raha dil to pagal hai film ka title song।

ये 33वें गीत की ओर जाने का, लेकिन फिलहाल मैं गीत की ओर जाने से पहले आपके SMS की ओर जाना चाहूंगी। वनपुई दिल तो पागल है, नलजिया ही माधुरी ले, अक्षय कुमार ही बॉलीवुड चौन के दो बेर अरंती ने दो ठले मैं माधुरी ही अक्षय जो मासे ठा पोक मसे तेरो दो तान चौन ठवे तक चोनी मसे अक्षय ही जो जेवे थो तनी तेरो मामूनी इदो इला दो अन्या इला श्यात सा न्यां के देख वो तुई तकन तुई तकिन लोंगा इला जेल दोन्या ओ गन प्ले ले तुर पो इशिया द्वेक तुर ले मैं थक नॉन वेक अंग ची खाने दोन ने देखे लो छ दोन्या। और यहाँ पे अगले SMS को जानना चाहूंगी मैं बी एल चुंगथू की ओर से। इन्होंने कहा है मैं आरजे को हमेशा सुनती रहती हूँ, अच्छे अच्छे गाने बजाते रहो, आखिरी तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वाह सो नाइस बी एल चुंगथू, आपने हमें फिर से बहुत ही खुश कर दिया, और साथ ही साथ आपका साथ पा करके मैं सच में बहुत खुश हूँ। ठीक है, अंत तक यानी कि आखिरी तक आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो अच्छा लग रहा है और भी। ठीक है ना, सो मैं जाना चाहूंगी अगले गीत की, और अगला गीत रहेगा खास खास तौर से मामुने और बीएल चुंगथू आप दोनों के लिए। ठीक है, मामुने लिए बीएल चुंगथू ते इन पनी तान लिया लिया निसला चौन ये ने ये अगला गीत हमारा रहेगा वीर फिल्म का सलाम आया गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, यहाँ मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी, वाला साइलो साइलो की ओर से SMS आया है। इन्होंने कहा है, हेलो आर्जू मोन पे एवर ऑन प्लेन अलवे, रिम से अरिजीत ला फितरते फितरते, ठीक है ना, खा गई था कब चा कम वे रुनते हैं लपक खा चे कन गाय थे तो आज वहां जान वाला साइलो साइलो नकी ना एंदा रुका कर उन ले ले दो ना छुट्टी होना जो आने गई था कन तुम मे दो ने मिन्यांग ले जन जुन्न मन कर नहीं तो लो ने जो लास्ट सॉन्ग अहुन तो बक्सिया ओ हाई सी मसी रुन तीन नोन ले दो ने ओ हे कलो जोन थे नान एंड या नकी ना का प्ले थे नान का तीना का थे हिल लो नान खाकती अपा बिल खुशीर की तरफ से ये भी तशीफ लाए हैं। इन्होंने कहा है आरजे इला प्ले ले तुरखा एली खोल श्रिंग ओमेगा सांग ते या पार पारी पुमो या हुनपुई इतान कलाने रोंते ने खाकते पा बिल खो थिर ह्यानिन ओके खाकते पा नंगमा तान रोंते लेदवे आ चोन वी एला साइलो साइलो ते बी एल चोंग थोते मा मुनि रम लोते कुंगते ते जेसिका पीसी जेसिका इते सी जे थितेंद्र दास दुर्गे दुर्गेश नगनपुर आप सबके लिए जाता है। और दुर्गेश जी माफ कीजिएगा, आपके जो फरमाइश गीत थे इस वक्त मैं प्ले नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास और वक्त नहीं है। आई एम सो सॉरी। जितने भी यहाँ पे क्या है प्लेलिस्ट में क्यू लग चुके थे ना, वो प्ले करते करते मैंने सोचा था अगर इस जो गीत अंतिम गीत के तौर पे प्ले करने जा रही हूँ इस पर अगर टाइम बचे तो आपके ये फरमाइश गीत में प्ले करूंगी, लेकिन नहीं कर पाऊंगी, सो सॉरी। खैर कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए लौट आऊंगी 6 बजे, तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा आपकी आरजे मोंटी 108.7 FM जो में। ये रहा दोस्तों अंतिम गीत के तौर पे वो क्या है, दिल तो पागल है फिल्म का एक और बहुत ही लोकप्रिय गीत।

आपके आरजे मोहनपुरी 100.7 एफएम जवाई में आप सबके साथ आया फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों, हम लेंगे गीतों का आनंद और इसी तरह से हम और आप क्या है बातचीत भी करते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और मैं जाना चाहूंगी आपके मनपसंद गीतों की ओर। मैं यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल देखना चाहूंगी कि यहाँ क्या है। हाँ, गीत आप सबके लिए ये रहा। सबसे पहले गीत के तौर पे रांझाना, ठीक है ना, लीजिएगा आनंद।

0: दोस्तों, मैं आपके SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ SMS आए हैं हितेंद्र दास की ओर से, और इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी। हितेंद्र दास लिखता है, आरजे जी असम से, हितेंद्र दास। हितेंद्र दास, अभी भी आप हमें सुन रहे हैं ये जानकर के मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगला SMS जो है, मैं देखना चाहूंगी कौन है यहाँ पे। पीसी जेसिका की ओर से, पीसी जेसिका लिखती है, वो मानपुई इलोलेट लेता मो नेक्स्ट खाइन पथुम तानो हाक्ते पाबिल खोथलियर तान ओर अंतिया हाक्ते पाबिल खोथलियर यानी नो गाय थंगे तोरा गाय ताइला चान पीसी जेसिका इतान करों तिलेद वे ओ। और यहाँ पे अगला SMS जो है, आरजे प्ले ले तुर खा नंगा तान ले लो गाय थवे जोंग जोंग तान ले कठियान ते वे श्रंग श्रंग मी ते तान ती हियान इन लल दिन पुयो फल कौन हियान इन रन थना चन ठियान ते जोंग जोंग हियान लो गाय थंगे तोरा गाय बोक ताइ ले तरो चन लल दिन पुया फल कौन अतो थिंग इन मिन लो मिन पुई ले तो रिन कन सोम हाल बोक चिया पीसी जेसिका पो थे चौन ओ पीसी जेसिका ले कुंग ते ते ही चु अनमुथी अच्छा ले जेव चिंता मोज अतो थिंग मा हियानिन ओम लु तुक बोक ता ने चौन इन पो नि से मैं जाना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत ये रहा आप सबके लिए दोस्तों, तेरे नैनो तेरे नैना मेरे नैनों से। ये गीत जो है आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

दोस्तों, मैं एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ एसएमएस जो है वी कुंती की ओर से आया है। इन्होंने कहा है, और जो वन पुए इप्ले ले तुर खा मिंग मोई ते ओमेगा सांग ते या कपुके वाल ले मुरी सत्तेतान ओरन ते आ चुआनिन वी कुंते हियानी नथ्यान ते रन थन सकते इन लो ngai thlenge tura ngai tai la chon meng moi te por re le me china miki duty like kha chuan in alang mol mola ma se a boy deu te pon ya nga mo chuan o vi kung te a that takin ilo ngai thlak tan hun nuam takai lo man the nan kan te nga tu na kan ngai thlak tur hi itan karon ti ni o laldin pu ya fal kon veng lai thian te le nang ma tan chuan pc jessica aapke liye bhi hitendra das aapke liye bhi ये रहा गीत।

हाँ दोस्तों, मैं यहाँ जाना जाने की कोशिश करूंगी। SMS की और वाला साइलो साइलो की ओर से इन्होंने कहा है, और जो मॉन्टी फ्रॉम द क्लासिक देव वेयर रंत्या क्लासिक का नीचे और मोहम्मद रफी लालम ते रंती ने अनिलो जोन फितरते रंतीले आ जोन फितरते ही कलो जोंगा तुम्हें छूंग जोन इन चलना चाहूंगी। यहाँ गीत की ओर दोस्तों, यहाँ पे सनम द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर सा गीत तो है, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहूँगी इनके यहाँ एक दो गीत की ओर। देखूँगी क्या लगाऊँ आप सबके लिए। यहाँ पे जो पहले गीत रखे हुए थे ना, सबके सब गायब हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे महबूब कयामत होगी, ये सनम द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर सा गीत है, आप सबके लिए मेरी तरफ से जाता है।

दोस्तों, अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ गया है। यहाँ लल दिन पुया फल कौन की ओर से इन्होंने कहा है, प्ले ले तुर खा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले के ठानते वेंग संग संग मी ते तान रंती नी लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई हैं ओले कन लोम एम एम ओ लल दिन पुया तो मिन लो थेन पुई ले तुर इन कन सोम खाल चे आ चौन वाला साइलो साइलो हैं नी फितर ते रंती आ हे लाई ही अतोप ना तान कन मांग दोना नी चलना चाहूंगी गीत की ओर। जैसे फरमाइश यहाँ पे है फितरते गीत के लिए आप सबके लिए और खास तौर से वाला साइलो साइलो के लिए जाता है ये रहा गीत आपके अर्जुमान पे 100.7 FM जो में आप सबके साथ।

जाना चाहूंगी यहाँ पे भी, जो हमें FB पे नहीं, जिन्होंने हमें अपने मोबाइल के जरिए या रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, उन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपके आरजमान पे 100.7 FM जोए में आप सबके साथ खूबसूरत और मीठे मीठे गीतों को लिए मैं यहाँ पे हाजिर आप सबके लिए। मीठे मीठे गीत हम एक संग साथ सुनेंगे दोस्तों। सबसे पहले गीत के तौर पे मैं आप सबके लिए प्ले करना चाहूंगी, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में ये गीत जो है पुराना गीत है, लेकिन इसका नया रूप जो है अरिजीत सिंह की आवाज में हम सुनेंगे। इन्होंने अपने लाइव शो पे भी क्या है इस गीत को बहुत ही खूबसूरत ढंग से गा के सुनाया है। सो मैं जाना चाहूंगी सबसे पहले गीत की ओर। ये गीत आप सबके लिए तहे दिल से मेरी ओर से जाता है, जो FB लाइफ पेज पे ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के FM जो 100.7 में जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए भी रहेगा, और साथ ही साथ जिन्होंने हमें अपने फोन के जरिए जो इसका आनंद ले रहे हैं उन सबके लिए भी जाता है। ये रहा गीत आप सबके लिए।

हाँ, यहाँ पे मैं ऑन करना चाहूँगी, मैं नहीं भूलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एफएम रेडियो सुनने वाले बहुत सारे हैं जो एफबी पेज में हमें ना देख करके ना सुन करके यहाँ पे इन्होंने हमें एसएमएस दिया है। मैं जाना चाहूँगी आपके एसएमएस की ओर, यहाँ पे हितेंद्र दास की ओर से सबसे पहला एसएमएस इस सेगमेंट में ये आरजे चॉइस है मेरा। इन्होंने कहा है गुड इवनिंग आरजे जी, हाउ आर यू कह करके हमें यहाँ पे उन्होंने नमस्कार कहा है, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, एंड आई एम गुड, थैंक यू सो मच हितेंद्र दास। और इन्होंने हमें ये लिख करके बताया है, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स शो आकाशवाणी आइजोल स्टेशन एफएम जोई बैंड 100.7, एंड इफ पॉसिबल प्लीज प्ले द सॉन्ग लाइन इज मेरे देश में पावो चले जिगरी दोस्त 1969 का, ये पता नहीं मैं ढूंढ पाऊंगी तो, ठीक है ना हितेंद्र दास जी, अगर मैं इसे ढूंढ पाऊंगी तो मैं अवश्य आपके लिए प्ले करने की कोशिश करूंगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि ऑल आरजेस एंड ऑल स्टाफ्स मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी आइजोल परिवार स्पेशली यू, देन माय फ्रेंड्स आर मिनाल सुमन सुमित, इस तरह से इन्होंने हमें एसएमएस दिया है। और यानी कि ये जो है सभी आरजेस को और यहाँ के सभी जो स्टाफ है सबको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच हितेंद्र दास आपके इस डेडिकेशन के लिए। और मैं हो सके तो, लेकिन ये जो है ना एफबी लाइव शो का समय है, एफबी पेज पे भी मैं हूँ, अगर देख सको तो आप वहाँ पे भी हमें देख सकते हैं। और कहना चाहूँगी ये आरजेस चॉइस का समय है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्यू कर चुकी हूँ और इन गीतों का आनंद हम ले रहे हैं। जिन गीतों का आनंद हम लेने जाएंगे, ये सब गीत जो है आपके लिए मैं यहाँ से डेडिकेट कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे अगला एसएमएस जो है लल दिन पुया फल कौन वे लाई की ओर से, आरजे प्ले ले तुरखा नंगा तान ले लौंगाई था वे जों जों तान ले आरजे जों जों तान ले कठियान ते वेंग संग संगमी ते तान लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई है अनरते ने। नेक्स्ट यहाँ पे एसएमएस जो है यहाँ के नंबर पे, यानी कि एफएम स्टूडियो के 100.7 एफएम जो के स्टूडियो पे जो एसएमएस आया है, इसका मिंग मोइते की तरफ से एसएमएस हमारे लिए इस तरह आया है, माँ मोनपुई नमस्ते, अगला गीत इतान हितेंद्र दास के लिए। ओह सो नाइस हितेंद्र दास, मिंग मोइते इज डेडिकेटिंग द सॉन्ग फॉर यू, ओके। और यहाँ पे मिंग मोइते के लिए मैं यहाँ से उनको डेडिकेट करना चाहूंगी, मिंग मोइते तान लिया लिया कर अंति ले द्वे आ चौन चा मह ह्यान सिबैले आरजे कलोंगाई थरिंग निया रंती ने वन लोमम थिन तक एम मिन लोंगाई थजे रो ओ चौन इन। यहाँ पे भी मैं जाना चाहूंगी बी के हितेंद्र दास की ओर से। ओ अच्छा, हितेंद्र दास जी आप यहाँ पे भी है ना, अच्छा लग रहा है आपका एसएमएस हमने पढ़ लिया है, के वाला वाल्मोया दुलाई वाल्मोया ये एसएमएस कमेंट ही नकिना कछिया रंग। चलते हैं फिलहाल गीत की ओर, गीत ये रहा, अगला गीत कम सुंदर नहीं बहुत बहुत सुंदर है, दिल का रिश्ता टाइटल सॉन्ग रहेगा फिल्म का। और मैं कहना चाहूंगी ये गीत मैं डेडिकेट करना चाहूंगी अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड चान मारी आ 98 mm जो पुई तान लिया लिया कन डेडिकेट अंगा चौन चुती रोल चौन इन हे मिथला दुवे mm तो चोंगी तेनु फा तान के त्यांगा एफ बी आ मिन लो एन मो एन लो मो हेता रेडियो आ हि चौन इन एफ बी पेज आ खेर लो मिन लो गाई था ज्या छीना चुवांग चौन अन तान कन तिबोक अंगा चौन तो ना एसएमएस मिन थन तो ते जोंग जोंग ले एफबी पेज मिन क्लियर तो

te zongzong in ze waaitaan. Karantine. हाँ आप सबके लिए दोस्तों ये गीत बहुत बहुत खूबसूरत है. मैं यहाँ से तहे दिल से आप सबके लिए डेडिकेट कर रही हूँ. ये रहा गीत, लीजिएगा आनंद.

और इसी तरह मैं जाना चाहूंगी यहाँ पे जो SMS आए हुए हैं इनकी तरफ भी मैं मुड़ना चाहूंगी। दोस्तों मिनाल अहमद की ओर से इन्होंने कहा है मिनाल अहमद की ओर से इन्होंने कहा है सुन ले जरा मूवी सिंघम रिटर्न। अच्छा ये फरमाइश गीत का समय वैसे नहीं है मिनाल जी, अगर आप समझ सको तो मुझे प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट एंड इन्होंने ये भी कहा है मैं ये गाना सुनना चाहूंगा और डेडिकेट करना चाहूंगा। ठीक है जिनको आप डेडिकेट करना चाहते हैं इनका नाम मैं ले लूंगी। आरजे जी आपके लिए और मेरे प्यारे पसंदीदा सभी आरजे के लिए और पूरा प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर इंजीनियर टेक्नीशियंस ऑल टीम डेडिकेट रहेगा। अच्छा ठीक है सभी सुनने वालों के लिए मेरे सभी दोस्तों के लिए और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए। कभी सुबह को याद आते हो कभी शाम को याद आते हो कभी कभी इतना याद आते हो आईना हम देखते हैं और नजर तुम आते हो। प्यारी एंड शायरी। यस वेरी ब्यूटीफुल बहुत बहुत सुंदर। ये सच में मिनाल जी मिनाल अहमद बहुत बहुत सुंदर शायरी है। ठीक है और आपने जो कहा जैसे कि यहाँ पे सिंघम रिटर्न्स का एक जो अरिजीत सिंह की आवाज में सुन ले जरा गीत के लिए फरमाइश दिया है ये मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी फिलहाल क्योंकि ये आरजेस चॉइस का समय है और लाइव शो का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं कहना चाहूंगी लेकिन आपने कहा सभी आरजेस एंड यहाँ के जितने भी आकाशवाणी के जितने भी परिवार हैं सभी के लिए आपने टेक्नीशियंस तक को है ना इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस को भी आपने डेडिकेट किया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मैं कहना चाहूंगी। और बदले में मैं भी यहाँ आपके लिए डेडिकेट कर रही हूँ ठीक है ना। और इसी तरह यहाँ पे अगले SMS की ओर जाना चाहूंगी चाम की ओर से अनिहि रेडियो अंगाई था पे तकनिया चौन इंगे तिन नी तिन हियान लोंगाई था रिंग ठीना अथने छुन्ति इला कसै सोल ओम लवे अरंतिने ओले अनि खोप मैत्रो। और यहाँ पे दुर्गेश आपने यहाँ पे मिस कॉल वॉइस दिया है लेकिन हम कॉल पिकअप नहीं कर सकते फिलहाल ठीक है। और इन्होंने कहा नेक्स्ट सॉन्ग डेडिकेटेड टू फ्रेंड मिनाल अहमद हितेंद्र दास। ओके मिनाल एंड हितेंद्र आप दोनों के लिए यहाँ दुर्गेश नगनपुर की ओर से डेडिकेट कर रहे हैं। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत भी कम सुंदर नहीं बहुत बहुत सुंदर है ये दिल क्या करे फिल्म का बहुत ही मशहूर गीत है प्यार के लिए गीत आप सबके लिए मेरी ओर से खास तौर से जिन सबको बहुत ही पसंद है ये गीत उन सबके लिए जाता है ये रहा गीत।

हम यहाँ पे देखना चाहूंगी फर नो वन पुई मिंग मोई ते चुआन हु फे चे सेल चुआन अबेम खुद खुद दोंग चे रोन त्या रोन नै न सतप ता नि मिंग मोई ते हे लोंगाई थामो के वा ल हियान इन एफबी ल मा पोमिन रोन कमेंट ता चुआन हे तिला या हियान इन एंगे के माने सिस्टम मा हियान इन मो कन एसएमएस नंबर आ पो हियान इन रोन थोन ने हे इलो ngai थंगे इन करिंगा चान मेंग मोय ते आ इतान ल्याव ल्याव कन रोन तिदे ते अंग ओ अजेल दिन थु रोन सोइ न समय एन ए मेंग मोय ते हियान इन मो मिन हु थे चुनी सेलंग चान मो के आय था दंग तम तक खमो अन तम दोन लुत तोका ए चुवांग चान इन दु थन तोरा खान बॉय दोन ती खा चेंग सानी चो मेंग मोय ते ते केवाल ते कुंग ते ते इन सवाई तान करन त्यांगा चोन हे रम शन शन चंग असम चंग ते को लंपंग मेनलैंड लंपंग चंग पोन मिरोन ngai थतु तेन ओम वे नो ला हेंग दुर्गेश ते चोन इन मिनाल ती ते ए रम पोन दे अमी तेन ने आ चोन चोन एफबी पेज आ पो मिन लो थिर ngai बोकता हेतला यहन मिन लो थोनवे रिंग बोकता SMS देंग ते पो अन लुवे एम एम ने दी खा कर सोई खाल नि सेला 5 मिनट रह गए हैं। 5 मिनट के अंदर हम कौन सा गीत सुनेंगे ये मैं सोच रही हूँ दोस्तों, और मैं चाहूंगी कि 5 मिनट के अंदर में मेरे हाँ मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ठीक है? नए नए गीत जो है मैं अपने आखिरी सेगमेंट में अंतिम सेगमेंट में आप सबके लिए प्ले करूंगी। ये मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, यस बॉस फिल्म का बहुत बहुत लोकप्रिय गीत, मशहूर गीत आप सबके लिए डेडिकेट करना चाहूंगी। ये रहा गीत।

हमें सभी सुनने वालों को धन्यवाद। और इसी तरह आपके आरजे मीकी आ रहे हैं आप सबके लिए, आपके आरजे मॉन्ट्री 100.7 FM जोवे में आप सबके साथ। मैं लौटूंगी आप सबके लिए 10 बजे, तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा।

आपकी आरजू मानपुरी 100.7 FM जोबोई में आप सबके साथ एक बार फिर आए समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों मैं कहना चाहूंगी रिश्तों को निभाने के लिए कभी बहरा गूंगा अंधा भी बनना पड़ता है। रिश्तों को बचाने का उपाय अपनी गलती को मान लेना भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। माफी मांगना एक बहुत अच्छी आदत है, सच्ची माफी की मांग में घमंड जो है उसको छोड़कर माफी मांगनी होती है। ऐसा जब हर इंसान करेंगे तो रिश्ते बेहतर बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जाना चाहूंगी गीत की ओर तुरंत ही।

गीत हमारा रहेगा यहाँ। सबसे पहला गीत कोई ना, ये गीत जो है आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ, लीजिएगा आनंद।

श्रेया घोषाल, गिफ्ती हरनूर, है ना, तनिष्क बागची, इन सब की आवाजों में था। बहुत ही सुंदर गीत वाकई में। दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी आपके SMS की और यहाँ में मोहित की ओर से माँ मोन पु ये तान लेंगा इतले तो तान के वा लतिल लविन रोंते ने ओले के वा लतिल लवनी चू लो लगा इतले तक अंग मो अने हैं नमो अलो ए गोरो फुटबॉल अंगाक वे शिम शिमंग जानिन चुकरिन दानिन तेरो मेंग मोहिते चान हे इलोला ngai thachar zar min lo la ngai thachar zara min lo la men puya ichunga lom thu kan sui o meng moi te a chan lal din puya falcon kia taraf se yahan pe sms is tarha aya he inhone kaha hai rj play le tur kha nangma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang mi te tan par pari pu tan kung te tan meng moi te kewa la tui kwa la mi te tan ron te ni chuan lal din pu ya falcon veng lai i tan karon ti let ve boka chuan

दोस्तों, अगले गीत की ओर तुरंत चलते हैं। मैं फिलहाल गीत की ओर तुरंत ही जाना चाहूंगी दोस्तों। और ये रहा गीत आप सबके लिए। ये गीत जो है ना, नया गीत है, फिर कभी आप सबके लिए मेरी ओर से।

दोस्तों, मैं गीत की ओर जाने से पहले मैं कहना चाहूंगी, शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार के तीन जादुई शब्द

तो जोहे से जानना बहुत जरूरी है, आप सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी क्योंकि हमारे बीच, श्रोताओं के बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आजकल के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो अंग्रेजी में इसे 3 गोल्डन बर्ड्स कहते हैं। तो ये क्या है? एक तो है प्लीज, जिसे हम हिंदी में कृपया बोलते हैं, और दूसरा है सॉरी, जिसे हम माफ कीजिए या क्षमा करें, है ना, और तीसरा है थैंक यू, यानी कि धन्यवाद या शुक्रिया जो हम कहते हैं। इन 3 शब्दों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा इसका प्रयोग करना चाहिए। प्लीज बोलने से हमारा क्या जाता है? अगर आप बहुत ही बड़े ऑफिसर हो तो भी अपने नीचे जो काम करने वाले हैं उनसे भी अगर आप बातें करेंगे, इसी शिष्टाचार के शब्द को प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और काम करने में मजा आता है दूसरों के साथ, राइट? दोस्तों, अगर गलती हो तो सॉरी बोलने में क्या है, आप बॉस है तो क्या हुआ, है ना। प्लीज सॉरी थैंक यू जो है हमेशा इन शब्दों को बोलने की जो आदत है उसे हम सबको लगा लेना चाहिए, नहीं तो क्या है, काम का माहौल भी ठीक नहीं रहता और इसी तरह से घमंड का भाव जहां ज्यादा होता है वहां पे अच्छा नहीं लगता, यानी कि वहां खुशी का माहौल जो है वो नहीं बन पाता, ठीक है। यहाँ लदिनपुया की ओर से SMS इस तरह आया है, आरजे मोनपुई इप्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग सोंग तान ले आरजे जोंग सोंग तान ले दोरपुया कठियान ते तान ले कठियान ते वेंग शंग शंगमी ते तान लदिनपुया फलकोन वेंग लाई FM गाई संग एम तो रंती आ चौना तो पाहियान त्वांग तकिन इहो दोन्या ओ रंती ने लदिनपुया फलकोन वेंग लाई कवान लोम ते लुल एम दुसक नते मिनरोन लाना chuan ho do na he tiang anga iklong taka ho tu ra du sak na min han lan teng te he alom om dang dai em ani ti khamin lo shat sak don ya oh chuan nang po tui takin zan in na nge ni football te en do na ni chuan in lo en a chuan mu thu na po tui taka lo mu tu rin du sak na kan lan khal bok che ni chu oh दोस्तों, अगले गीत की ओर जाना चाहूंगी मैं। चलो चलते हैं पुराने गीत की ओर। ये रहा आप सबके लिए देखा एक ख्वाब, तो बहुत ही सुंदर गीत है, सिलसिला फिल्म का, किशोर कुमार की आवाज में। ये रहा आप सबके लिए, किशोर और लता।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों, अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ गया है। अंतिम गीत हमारा रहेगा तेरी ओर गीत, ठीक है? और सफलता के 3 गोल्डन वाक्य मैं आप सबको अंतिम शब्द वाक्यों के तौर पे कहना चाहूंगी। काम पर ध्यान दें, असफलता से ना डरे, वक्त की कीमत पहचाने, और अपने आप पर विश्वास रखिए। आत्मविश्वास जो है बहुत ही अच्छा होता है, आत्मविश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। और हमेशा कठिन परिश्रम करना भी बहुत अच्छा होता है, बिना कठिन परिश्रम के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सोच का असर बहुत ही जरूरी है, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। जीवन को बदलने वाले 3 व्यवहारिक नियम को हमेशा क्या है याद रखना चाहिए, सुनना सीखें, बदलाव को स्वीकारें और हमेशा ईमानदार रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शुभ शुभ शुभ रात्रि। आपके आरजे मोहन पे 100.7 FM जो में आप सबके साथ। दोस्तों, जब तक ना लौटूं फिर मेरा इंतजार कीजिएगा। अंतिम गीत ये रहा तेरी और आप सबके लिए।